0: Dufan. Hello, Anshish.
1: हजूर घोड़े का तबीयत खराब नहीं, बहुत रोज़ है आपका सवारी नहीं मिला, ये दिल खराब।
0: दाना ठीक पाच्छे तो?
1: जी हाँ हजूर।